0: It's 6 o'clock.
1: The following program is a repeat. Some dates and information may no longer be relevant.
2: Up next, Radio KJ Local. Krish and Jibby bring you an hour of stress-free fun, great Bollywood music and local news on Plains Media.
3: Hello, beautiful people. Bula, salam, namaste. You're listening to Radio KJ Local.
4: Stay tuned for a little bit of everything. A little Fiji, a little India, a little music, a little laughter, a little hum, a little up, and heaps of entertainment.
3: This is your host, RJ Krish.
4: With your host, RJ Jibby.
3: Welcome to Radio KJ Local.
5: हैप्पी हैप्पी हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, कैसे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रेडियो के जगह साथ है, मैं हूँ आपका साथी आरजे क्रिश, और हर फ्राइडे की तरह एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं. बहुत कुछ आज भी स्टूडियोज में होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज कुछ गेस्ट ज्वाइन इन होने वाले हैं. इन गेस्ट से हम बात करते चलेंगे. याद रखिए, हमारा फ्राइडे का जो शो है, यस फ्राइडे शो, इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय द मैन हिमसेल्फ, जगी भोपाल फ्रॉम अरिस्टो रियल स्टेट. इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग और थिंकिंग ऑफ सेलिंग योर हाउस, घर बेचने के लिए, घर नया लेने के लिए सोच रहे हैं, तो जगी इज द नेम टू go to. और बाकी भी हमारे जो स्पॉन्सर्स है, चलो इनको भी हम बारी बारी से याद कर लेते हैं. NZ Clinical Mastery. If you know somebody who wants to move to New Zealand and study nursing, उनको नर्सिंग करना है, तो NZ Clinical Mastery, ये नाम जरूर याद रखिए. Eco Travels. To travel all around the world, Eco Travels is the name. Re-immigration, immigration की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, so re-immigration is the name and the place to go. Touch and Glow, yes, आपको भी जीबी जी की तरह ग्लो होना होना है, तो Touch and Glow is the name. और इसके साथ साथ हमारे सामने आज स्टूडियोज में बैठे हैं, बहुत ही जल्द आप इनको भी देखने वाले हैं, MC Care New Zealand, Manish Community Care New Zealand. यार आप बिजी रहते हैं लाइफ के साथ, लाइफ शायद कोई ऐसा हो घर पे जिनको जरूरत है केयर की, चाहे वो बड़े छोटे कुछ भी हो, Manish Community Care नाम जरूर याद रखिए.
4: साथ ही साथ अगर आप मॉर्गेज के बारे में सोच रहे हैं, घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, मॉर्गेज का जो फंडा नहीं लेना है, तो आपको कांटेक्ट करना है स्क्विरल मॉर्गेजेस को, हु कैन मेक योर वर्क इजीयर.

जी हाँ, इसके साथ साथ फैन फेयर इवेंट प्लानर्स, यार शायद ही ऐसा कोई पेज होगा या शायद ही ऐसा कोई इवेंट होगा जहां पर आप जाएंगे और फैन फेयर का डेकोरेशन, सिल्की एंड अ थीम का प्यारा सा खूबसूरत सा डेकोरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यार